0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: फिर न करवटें

0: हमारी वेब.com जितेश राइस।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: दस्तगीर प्रोडक्शन।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: आप सुन रहे हैं
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुझो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तें जो आसान जवाब यो आ ये बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आए। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए। असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी। 10 साल जो उम्र ताई जितरा भी बार आए उन्हन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
0: का हर चप्पा हर गोशा
2: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM
2: आवाज
1: GFM 88.9

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

तुम्हारी उम्मीद मुआजिजों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मुआजिजों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिए बदंदर तमाम खूबसूरत मासूम मई सोने समात उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। समंदर सातों की बारिश और आसमान खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नहीं से जागता समय से आसमान जिंदगी से मौत तक चांद से तार तक हमसे खुशी रख दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी की आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमत और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती। जनाब प्रोग्राम चलते के नाम मस्ती में आप तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बतों समादों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स फॉर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान। नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल जी आपके सिद्राव के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पर जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो तमाम तो लोग जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स अंत के हालत उनके से ही आपकी हालत है उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है। फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली है। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं। तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे तीन बजे तक, यानी कि दो घंटे हमारे पास मौजूद होकर इन दो घंटों में हम करने वाले हैं जी इतनी सारी बातें। तो इतनी सारी बातें तो तभी होंगी जब आपका साथ हमारे साथ मौजूद होगा। तो बिल्कुल जी आपका साथ प्रोग्राम में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि आपकी वजह से हमारे प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं। तो बिल्कुल जी मेरे प्रोग्राम के चांद जरा हाजिर हो जाइए। और जो बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार करे थे। ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए आपको कहेंगे मेरी वाले गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदर आली बोस आपके होंठों पर 440 की समय लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 की समय लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब एक बहुत ही खूबसूरत सी नाद के साथ। बहुत ही प्यारी सी नाद जनाब आप लोगों के लिए आगे से प्रोग्राम रखेंगे। और नाद के बाद हम जैसे ही वापस आप लोगों के पास आएंगे तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या है। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क प्रोग्राम चलती का नाम मस्ती।

0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फैम एक
2: आगे पासवर्ड
3: फीलिंग से डिसाइड होता तो आपका पासवर्ड क्या होने वाला था ऐसे के साथ साथ बहुत ही ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है जिसके ऊपर आप लोगों के मैसेजेस चाहिए मुझे बहुत ज्यादा वाले और अगर आप हमारे प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 881 और फेसबुक पर ज्वाइन करेंगे तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए फेसबुक पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सके और हम खूब सारे मजे कर सके

बात है इसी के साथ साथ आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आपके मैसेजेस हैं जो जाहिर सी बात है शामिल प्रोग्राम रखे जाएंगे, और इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कर दिया करें, आप ही लोगों का काम होता है। इसके अलावा अब्दुल गफ्फार भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहिए जी आप भी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। उनका अलावा हमारे साथ हिदायतुल्लाह कहते हैं वैसे टॉपिक अच्छा है लेकिन मेरे पास तो वाईफाई

नहीं है, सो दुखी ये भी चीज है। और हाले सुल्तान कहती नहीं नहीं आपके टॉपिक का जवाब दिया है, क्या बात है जी, फिर तो जबरदस्त हो गया। और चाचा कहते हैं माय डॉटर कुरत लेन एनी लाइक पोयम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, दैट्स व्हाई शी पुट दैट इन। अच्छा 2014 में स्टिल अञा ताईं तव्हां जो इहो ई पासवर्ड हले पियो, न कयो बाबा न कयो, पासवर्ड चेंज कंदा रहंदा माण्हुनि खे दप पइजी वेंदी आहे न, पोइ बसि हशर हूंदो आहे। अच्छा मोहम्मद मीरन जकराणीअ में सुन रहे हैं जेकब आवाज से, आपको भी वेलकम कहा जाता है। और हिदायतुल्ला आपकी पसंद का गाना लगाया जाएगा। जुल्फकार अली जकरानी हमारे साथ हैं जेकब आवाज से, और क्या कहते हैं प्रोग्राम पसंद है आपका, थैंक यू सो मच जी, आपकी मोहब्बतें। और हैप्पी कहती हैं आरजी अगर वाईफाई का कनेक्शन फीलिंग से होता तो मैं हैप्पी पासवर्ड रखती क्योंकि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, तो इसलिए मैं हैप्पी पासवर्ड रखती। योर टॉपिक आंसर, ओके जी समझ गए हम। और मीर तारिक बलोच कहते हैं काफी टाइम का पोए वरी तमाजी प्रोग्राम में शामिल थी, थैंक यू सो मच, ताकि चौथा भली करी आया। अच्छा दिया कहती हैं कि मैं शामले प्रोग्राम कमी होती हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया था मैं चुपके से आपका शो सुनती रहती हूँ। मास्टर मंजूर का कोई भी अच्छा सा गाना डेडिकेट अली मुर्तजा, चलो इंटर्न हो गया। वैसे अली मुर्तजा भी कुछ दिनों से नजर नहीं आ रहे। और ये हमारे साथ एहसन अली अरबानी मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम। ओ माय फेवरेट आरजी मैडम मुस्कान, कैसी हैं आप? मैं भी आ गया हूँ कुछ दिनों के बाद, आपको लगा होगा मैं नाराज हो गया हूँ लेकिन मैं मसरूफ था। नहीं नहीं आप मुझसे नाराज नहीं हो सकते, आप अच्छे बच्चे वो जो लोग नाराज होते ना वो बता कर जाते हैं।

Ni ma naraza ya mama wana meto po ma chania saya o do na ritho bhalo par chan kha po saindo kakha jo thoro kando avari vatando gaindo so jeki naraz tane ji jeki ghani aadat hundi a na ai hu har gal te naraz thi ena maano ohi bas ma chania khush ho jana side ho jana ela maano thodo kuch ghat pasandinda hai और हिदायत लगे थे सिदरा कराची जैसे शहर में बिजली नहीं आती, बिजली वालों को कोई बताए कि हमें गर्मी की परवाह नहीं लेकिन मोबाइल चार्जिंग करने दो। असल तो बाबा इया गाल हुंदी आ गर्मी जी हाने के परवाह कोने, बस फोन चार्ज हो जाए, बस पोसाला सब कुछ आ। कराची में भी बिजली सही नहीं थी, अले बाबा पोयो तो सही ना है नहीं।

पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, टॉपिक को फॉलो कीजिए। और यहाँ पर सोफी वफा बलोच कहते कारू झर नंगर पार से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं पासवर्ड रखता चलिए अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। रशीद कोसो में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, आप जी हैदराबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। दिया कहती है अली बहुत बिजी है वैसे, अच्छा ये हमें चांस मिल जाता है, या भी गाल आए चलिए अच्छी बात है।

अच्छा जी, बातें तो सही थी, कोई मसले की बात ही नहीं। यहाँ पर आप प्रोग्राम सुन रहे हमारे साथ साथ हैं, और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं, हाँ जी बताइए, अगर वाईफाई पासवर्ड आपकी फीलिंग से डिसाइड होता तो फिर आपका पासवर्ड क्या होने वाला था। एक और बहुत ही प्यारा सा गाना, जो कि भाई ये उमरानी की आवाज में गाना है, नया गाना आया है, तो मैंने सोचा चलो भाई एंजॉय करते हैं साथ में मिलके।

हाले सुल्तान कह रही मुर्शिद इसकी जाना अभी तक क्यूट है भाई, मैं सोच रही थी सदा बहार जाना है, सदा बहार दिया के दी रियो में की है माना पेट्रोल भराए जाना वर्डी विसरी में सकी करता है बाबा आने खोसो साहब के केर बुधाए अजकल सबनी सिंधी गानन में जेन देगे रिवो साइड इश्क थी वियो

भलो गानो बुधो सी उनखा अलावा बियो एकडो भलो गानो जेको बिल्कुल असा एंजॉय कना सी तवां जा मैसेजेस आयन बिल्कुल तवां से कचरी हलन पयो प्रोग्राम तवां जो पंजो है जे तवां सा सगन मौजूद हुंदा आयो आई उनखा अलावा

अच्छा डॉक्टर हसीना सुमरो कहती असां अच्छा चली डॉक्टर साहिबा तव्हां जेको गानो चयो आहे न बिल्कुलु तव्हांजो गानो हलाईंदासीं तव्हां उहो गानो चयो आहे जेको मूंखे बि वणंदो आहे सो तव्हांजो गानो बिल्कुलु ॿुधंदासीं रसूल पासी आबिदुसीन चंबानी भाई वालेकुम अस्सलाम मेरा पासवर्ड नोट कीजिएगा गुस्से से आंखें मत दिखा और फिर मुस्कुरा देना अच्छा गुस्से से आंखें दिखाना और फिर मुस्कुरा देना इहो पासवर्ड हुजे आधे जो सही आहे बाबा सही आहे अच्छा गोठ हाजी गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी का कुर्बानी खास के लिए भी संयुक्त प्रोग्राम बुधी पर भानजो मोहबित हुआ है थैंक यू

0: क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना इंजॉय कर रहे हैं। साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद दे दिया कहती फनकार शायरी वरी असा जेड़ा बुद्ध जेड़ा वायरल करण जे लाइ वेठा आयू नी। बिल्कुल यह गाल आए सजो कम त असा जो आए अवाम के केड़ी चीज अट्रैक्ट करे थी, अवाम केड़ी चीज दे पोया भले थो, या अगर एक दफो उन मानू के खबर पे जी वे ना जेको एड़े किस्म जी शायरी ठाए थो गाना ठाए थो तो पो हुन जो यो ट्रैक उन के मिली वेना बाबा बस हाने सा के केड़ो कम करनो आ तो सजो कम ओ आ अगलो उन के रिस्पांस केड़ो दे थो। अगर ता मतलब अस सब मानू मिली करे उन चीज जे उन के रिपोर्ट कयो या वरी उन जे
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जमान इस्माइल बकाई चयो आहे त पाकिस्तानी आर्मी चीफ जे दौरे जो मक़सद पाकिस्तान ऐं ईरान विच में लाॻापन खे वधीक मज़बूत करणु आहे। फील्ड मार्शल जो दौरे में खिते में अमुन इस्तहकाम बाबति पाकिस्तानी कोशिशुनि जो तसलसल आहे। परडेही मीडिया मूजिबि गुज़िरियल ॾींहुं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऐं ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराकी विच में फोन ते राब्तो थियो, जंहिं दौरान खिते जी सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई।

नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सुभाणे 28 अगस्त ताईं बरतानिया जो सरकारी दौरो कंदो। परडे॒ही तर्जुमान मूजिबि इसहाक़ डार बरतानवी परडे॒ही वज़ीरनि समेत ॿियनि आला अमलदारनि सां मुलाक़ातूं कंदो। मुलाक़ातुनि में सोमालिया में यरगमाल पाकिस्तान जो मामिलो उथारियो वेंदो। रावलपिंडी ऐं इस्लामाबाद में गुज़िरियल तेज़ बरसाति सबबि केतिरा ई इलाइक़ा पाणी हेठि, रोड रस्ता पाणी हेठि, केतिरनि ई इलाइक़नि में पाणी घरनि में दाख़िल थी वियो। मुल्तान, बनून, सवात ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बि बरसाति। कराची में मौसम जुड़ाली, मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बूंदाबादीअ सबबि मौसम ख़ुशगवारु।

0: हादसन में अठ जणा हयाती विञाए वेठा। सोल्जर बाजार मली रायशा मंजिल बिन कासिम टाउन ऐं ॿियनि इलाइक़नि में रोड हादसा। ट्रैफिक पुलिस मूजिब कराचीअ में हलंदड़ साल मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 603 हयातियूं ज़ाया थियूं। 7,467 माण्हू ज़ख़्मी थिया। हेवी ट्रैफिक हादसनि में फोत थियल शहरनि जो अंगु 184 आहे। कोटड़ीजीअ में हथियारनि जे ज़ोर ते फुर दौरान मज़ामत ते नौजवान क़तल। वारसनि पारां लाश रखी धरणो। हुसैनाबाद स्टाप वटि हथियारबंदनि नाकाबंदी कंदे ईंदड़ वींदड़ गाॾियुनि खां फुर कई। मज़ामत ते खेरपुर वासी नौजवान फैसल भुट्टो मारिजी वियो, संदसि दोस्त ज़ख़्मी। वारसनि पारां वाके वारे हंधि लाश रखी धरणो। रोड ब्लॉक कातलनि जी फौरी गिरफ़्तारी करण जो मुतालबो। बिरयालो भरिसां कार इल्ज़ाम हेठि नौजवान नारी पीउ सां क़तल। जवाबदार फरार। ॻोठ इमाम बख़्श नारे जो में जवाबदार आशिक नारे जो पंहिंजे धीउ शकीला खे क़तल करे छॾियो। इतलाह ते हद जी पुलिस वाके वारे हंधि पहुची लाश इस्पताल मुंतकिल करे छॾियो। पीर जो ॻोठ वेझो ॿिनि धुरनि में झेड़ो फायरिंग। नौजवान क़तल। कोट पुल वारे इलाइक़े में जागीराणी बिरादरीअ जे ॿिनि धुरनि में हलंदड़ पुराणे तकरार तां झेड़ो थी पियो। फायरिंग जे नतीजे में नौजवान आसिफ अली जागीराणी मारिजी वियो। इतलाह ते पुलिस वाके वारे हंधि पहुची नौजवान जो लाश इस्पताल मुंतकिल करे छॾियो। धुरनि जे झेड़े में हिन वक़्त ताईं 8 ॼणा क़तल थी चुका आहिनि। सखर में गुज़िरियल ॾींहुं क़तल थियल नारीअ जे वारसनि जो क़ातिलनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ लाश रखी एहतजाज। नारी साजदा मीराणीअ जे वारसनि जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ एहतजाज कयो। वारसनि जो चवणु आहे त साजदा मीराणीअ खे संदसि मुड़ुसु अली हसन मीराणीअ क़तल कयो आहे। घरू अणत बणत तां जवाबदारनि असांजे नियाणीअ खे क़तल कयो आहे। पुलिस जवाबदारनि जी साथारी बणियल आहे। DIG सखर ऐं SSP नोटिस वठी क़ातिल गिरफ़्तार करे। मीरपुर माथेलो भरिसां बेराम पुट माउ खे घर अंदरि ज़ंजीरनि सां ॿधी छॾियो। वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल। ॻोठ कोड़ो खान लगारी में पीरसन औरत हुसैना लगारीअ खे पथर दिल पुट असद लगारीअ ज़ंजीरनि सां ॿधी छॾियो। घर अंदरि क़ैद ज़ंजीरनि सां ॿधल औरत जी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल। औरत हुसैना लगारीअ जो चवणु आहे त पुट 5 ॾींहनि खां ज़ंजीरनि सां ॿधी छॾियो आहे। सख़्तु तशदुद बि कंदो आहे। खेसि ज़ंजीरनि मां आज़ाद करायो वञे। ऐं जरवार माइनर खे मंगणहार पाड़े वटां 20 फुट घारो। पाणी घरनि में दाख़िल। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त आपाशी अमलदारनि खे इतलाह ॾियण बावजूदि हिन वक़्त ताईं केर बि न आहे पहुतो। घारो फौरी तौर ते बंदि कयो वञे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेट। सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध धर्म खुशखबरी। अवां जे शहर खिपरो में फ्री मेडिकल कैंप। तारीख 18 अगस्त ऐं 25 अगस्त 2026। अंगारे जे ॾींहुं सुबुह जो 10 वॻे खां मंझंदि 3 वॻे ताईं लॻी रही आहे। जंहिंमें डॉक्टर असद अज़ीज़, MBBS MS आर्थो, आर्थोपेडिक सर्जन, हॾी ऐं जोड़, गोॾनि जो सूर, चेल जो सूर, कंध जो सूर, अर्को
2: नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी। पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
5: हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मठियारी सकरन महरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चलती का नाम और जनाब सुनने वाले तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद आपकी मोहब्बतों समादों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। बिल्कुल जी आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में और उसके अलावा जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए, जिन लोगों ने अभी अभी हमारा प्रोग्राम सुना स्टार्ट किया था उन लोगों को आज के टॉपिक को जरा बता दे चले, तो आज मैंने आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह पूछा है कि आप मुझे बताएंगे कि अगर वाईफाई पासवर्ड आपकी फीलिंग से डिसाइड होता तो फिर आपका वाईफाई पासवर्ड क्या होने वाला था, क्योंकि अगर ऐसा होता वो खुद ब खुद आपकी फीलिंग्स को जो है ना डिटेक्ट करके वो पासवर्ड खुद ही बस हो जाता, तो आप बताएं आपका पासवर्ड क्या होने वाला था। और इसी के साथ साथ आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं 8881 पर और फेसबुक पर, तो जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं फेसबुक को ज्यादा से ज्यादा जो है ना आपने लाइक और शेयर करना होता है वो ऐसे, क्योंकि जितना लाइक और शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकेंगे। तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, आपके बहुत ज्यादा वाले मैसेजेस हैं जिनको शामिल प्रोग्राम रखेंगे और हाँ आपकी अच्छी अच्छी पसंद पसंद के गाने भी हमारी लिस्ट में मौजूद हैं जिनको हम सुनते रहेंगे।

ओके जी, तो कहाँ थे भाईजान आके, हम जरा गानों की जानिब आ जाते क्योंकि आपकी पसंद के गाने जो हमारी लिस्ट में मौजूद है तो उनको भी जरा सुन लेते हैं। फायज़ अली के गाने की फरमाइश हमें आ चुकी है और ये डॉक्टर हसीना साहिबा ने हमें गाने की फरमाइश कर दी है। काफी दिनों से बोल रही थी कि ये वाला गाना सुना दे, तो डॉक्टर साहिबा ये गाना आपको डेडिकेट जाता है। आइए मिलकर इस गाने को जरा हम इंजॉय करेंगे और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ साथ, आपने इतने सारे मैसेजेस कर दिए हैं, सो थैंक यू।

ओके डाडो भलो गानो जो एंजॉय कदासी न खा अलावा हमारे साथ गुलाम अकबर खास के लिए कहते हैं तुझे याद हुई तारन जी रात हुई उस्ताद भी वसलाए सूरन जी रात हुई अस्सलाम वालेकुम सिदरा वालेकुम अस्सलाम प्रोग्राम में दिल सा भलीकार तवा के बिचंता दिल सा भलीकार आई मोहब्बत वाइन प्रोग्राम उधो पया कमर जमान बलोच हमारे साथ ये नुसरत फतेह अली खान का गाना लगाएगा बिल्कुल आपका गाना सुन लेते हैं थैंक यू आप हमारे साथ हैं और गोल्ड हमारे साथ हैं गोल्ड कहते हैं आई एम यासीन मिराली तालुका से हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया यासीन आपको वेलकम कहा जाता है और आबिद बिरोही हमारे साथ हैं नौशरो फिरोज से भाई कहते हैं सो गुड शो थैंक यू अब्दुल्ला अली कहते हैं सिद्रा बाजी आप मेरे बाबा साईं का नाम क्यों नहीं लेती हैं अली गुलाब शर हमारे साथ है और बाजी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है थैंक यू वेरी मच भाई आप नाम लिखेंगे तो आपका बाबा साईं का नाम लेंगे बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप दोनों को वेलकम कहा जाता है

अच्छा नजर मोहम्मद भट्टी हमें सुन रहे हैं. नजर मोहम्मद भट्टी भाई कहते लाजवाब प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई. किशोर भाई कहते अरे अदा फीलिंग तो चेंज थींदी रहंदी आ त यो कीअं माना तनी पासवर्ड भी तो चेंज थींदो रहंदो आ न कॾहिं ॾिठो अथव कंहिंखे हिकु ई पासवर्ड हुजे. पर छा खाले चयो त असां 2014 खां वठी हिकिड़ो ई पासवर्ड आहे. इहा चीज़ मूंखे थोरी मतिलबु अजीब लॻी. ईअं बि थींदो आहे छा पासवर्ड त वाई फाई जो उहो उहा चीज़ आहे जेका माण्हू हिकु आई डी चेंज कंदो रहंदो आहे. सो

पॉइंट हो था अगर मुझे फीलिंग पूछो त हुन जो वाईफाई पासवर्ड ऑल इज वेल यो त तमाम सुठो थी वयो और चाचा खालिद के दे वाकई फायसा हकीकत आए बिल्कुल बिल्कुल हकीकत आए और मायरा असन प्रोग्राम बुधे पई वालेकुम अस्सलाम मायरा के दी कैसी है नाइस यो थैंक यू वेरी मच मायरा कहती आज शाहिद बबर का गाना लगाइएगा सलाम देना सादिया और अनमोल और सब गर्ल्स को चलेंगे ठीक है सबको सलाम आपकी तरफ से

जी ॾाढो भलो गानो ॿुधो असीं ॿियो हिकिड़ो ॾाढो भलो गानो असांजी लिस्ट में आहे जेको मास्टर मंज़ूर जी आवाज़ में ही गानो आहे अच्छा ही सॉन्ग असां दिया जी तरफ़ खां अली खे डेडिकेट कंदासीं अली मुर्तज़ा खे डेडिकेट कंदासीं सो बिल्कुलु तमामु ख़ूबसूरत गानो जेको अचो त गॾिजी इंजॉय कयूं था बिल्कुलु प्रोग्राम तव्हांजो पंहिंजो आहे पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो ऐं मूंखे ॿुधायो किथां किथां तव्हां मूंखे जॉइन कयो आहे ऐं हा टॉपिक ते तव्हांजो जवाबु छा हूंदो

क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा गाना। और इसी के साथ साथ हमारे साथ सादिया कहती है कि ये फीलिंग का ख्याल कहाँ से आ गया, सो रही थी अभी नींद से उठी हूँ, वाह साईवा ऐसे गाने कहाँ से लेकर आती हूँ, मेरे पर्स में पड़े होते हैं, जब दिल करता है बस निकाल कर आप लोगों को सुना देती हूँ। अच्छा कमर जुबान बलोच के लिए वाईफाई पासवर्ड हैक भी हो सकता है, ऐसा ना हो कोई चेंज ना ले ले, ऐसा नहीं होगा ना, आपकी फीलिंग से रिलेटेड होगा तो बस आपकी फीलिंग तब्दील, आपका पासवर्ड तब्दील।

कहते हैं सिद्धराज लास्ट में कोई पोएट्री तो सुना दीजिएगा, आपकी पोएट्री शो में चार चांद लगा देती है, शो की रौनक और भी ज्यादा हो जाती है। चले मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी, आज आपको कोई अच्छी सी शायरी सुनाएंगे। और किशोर भाई कहते हैं कि मुझे घर जो वाईफाई नेम आहे स्मार्ट का हूँ, हाँ मता बे को समझो स्मार्ट का हूँ कंपनी जो भी बुधाए छोड़े।

अच्छा चाचा, तो बात ये थी कि वो मुझे ये लगा कि आपके पास तो ऑलरेडी अकाउंट है ना, तो आपको नए अकाउंट बनाने की क्या ही जरूरत पड़ेगी, इसीलिए बस मुझे ऐसा लगा था। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, आप इतना दुखी क्यों हो जाते हैं हर बात को लेकर, चिल रहा करें भाई, चिल रहा करें। और उनखां अलावा जेको आज सो जमान बलोच, बिल्कुल तव्हां टेंशन वठो, तव्हां जो गानो हलाईंदासीं कल न हलायो, तव्हांजो लाज़मी तव्हां पंहिंजो गानो ॿुधंदा, बसि थोरो सबर कयो, ठीकु आहे।

0: अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि अदा तुझा नसर चवन था मुझे डीपीए आया है
1: असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन तवरी बिहर छो प्यारियो मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए तो आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आए बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुवते मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी 10 साल जो उम्र ताई जितरा भी बार आए उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए
2: जो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
3: GFM 90.8

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

ओके जी, हुक्मदार अली शेख आप हमारे साथ मौजूद हैं। लास्ट में आप आ चुके हैं प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। सखर से आप हमारे साथ हैं। जवार मोहम्मद बचल शबानी भाई हमारे साथ मौजूद है। खुश आमदीद कहा जाता है। चाचा कहते हैं हम और भी मोहब्बत हो जाएगी, हमारी भी एक तरफा मोहब्बत थी, यानी आसरू आए। मजाक। अच्छा मायरा, थैंक यू सो मच तहां से गए आयो। किशोर भाई आपका ओ इतना सारा थैंक यू, और सारे लोगों का बहुत ज्यादा वाला थैंक यू। यहाँ पर लेती हैं आप लोगों से इजाजत, वरी तवां से मुलाकात है भाई मुझे 5 बजे वाले प्रोग्राम में। सो पांजो इलाही सरो खया रखना, इने का गलती थी हो जे तो माजरत कहूंगा। सो मुखलानी नाय बाबू सिंह सलामत सा सलाम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरान खिलाफ मोहसिन रज़ाई चयो आए त अमेरिका पांजे सफारतकारी ऐं ॻाल्हियुनि सां धोखो कयो। पूरी दुनिया ॼाणी चुकी आहे त डोनाल्ड ट्रंप हिकु बेवकूफ़ शख़्स आहे। मका मुआदे बाबति सुवाल ते मोहसिन रज़ाई चयो त मुआदे सां ज़ाहिर थिए थो त अमेरिका इन्हनि मुल्कनि खे आगाह करे छॾियो आहे त हू खितो छॾणु चाहे थो। ईरान जे सदर मसूद पिज़िशान चयो आहे त दुश्मन ईरान खे वेंज़ुवेला बणाइण जो सोचियो, पर ईरानी अवाम जे इतिहाद सां ईरान अहिड़ी ताक़त बणिजी उभरियो जंहिं दुनिया खे हैरान करे छॾियो। रावलपिंडी ऐं इस्लामाबाद में गुज़िरियल तेज़ बरसाति सबबि केतिरा इलाइक़ा पाणीअ हेठि अची विया। रोड रस्ता पाणी हेठि, केतिरनि इलाइक़नि में पाणी घरनि में दाख़िल थी वियो। मुल्तान, बनू, सवात ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बि बरसाति। कराचीअ में मौसम जुड़ाली, मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बूंदाबांदी सबबि मौसम ख़ुशगवार। कराचीअ जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 8 ॼणा हयातियूं विञाए वेठा। सोल्जर बाज़ार, मलीर, आयशा मंज़िल, बिन कासिम टाउन ऐं ॿियनि इलाइक़नि में रोड हादसा। ट्रैफिक पुलिस मूजिबि कराचीअ में हलंदड़ मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 603 हयातियूं ज़ाया थियूं। 7,467 माण्हू ज़ख़्मी थिया। हेवी ट्रैफिक हादसनि में फोत थियल शहरनि जो अंगु 184 आहे। खातून अवल आसफा भुट्टो ज़रदारीअ पारां रावलपिंडीअ में हिना जावेद जे मुबैना क़तल ते ॾुख जो इज़हार। हिना जावेद जे मुबैना क़तल ते सोगवार ख़ानदान सां ताज़ियत ऐं हमदर्दीअ जो इज़हार। आसफा भुट्टो ज़रदारीअ चवण आहे त अफ़सोसनाक वाक़े जी मुकमल ऐं शफ़ाफ़ जांच कराई वञे, ज़िमेवार माण्हुनि खे कानून जे मूजिबि अंजाम ताईं पहुचाए मिसाल क़ाइमु कई वञे। औरतुनि जे तहफ़ुज़ ऐं ॾोहनि जे रोकथाम लाइ असराइता क़दम खणणु ताईं ज़रूरी आहिनि। खेरपुर में मुसाफ़िर गाॾियुनि खां भतो वठण जी शिकायत ते ज़िले जा 19 पुलिस अहलकार मुअतल, जांच जो हुकुम। DIG सखर नास राबता पठण अहलकारनि खे सखर रिपोर्ट पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। मुअतल थियलनि में आसिफ शेख, नादर घुनियो, फ़हीम अब्बास, मोहम्मद मुराद, वसीम गोपांग ऐं ॿिया शामिल। ज़रियनि मूजिबि अहलकारनि खे मेराण हाईवे ते क़ाइम पॉइंट सां गाॾियुनि मां भतो वठण जे इल्ज़ाम सबबि मुअतल कयो वियो आहे। सकरंड में ॿिनि ॿारनि खे पोलियो हुजण जो शक ज़ाहिर। ॻोठ रामू कीरियो वासी शाह ज़मान एहसान सोलंगी खे पोलियो हुजण जो शक ज़ाहिर कयो वियो। हिकु महीने जे शाह ज़मान जी हिकु जंग ऐं पेर फिरी वञण सबबि वारसनि पोलियो वायरस जो शक ज़ाहिर कयो। 7 वरियनि जे एहसान अलीअ जो 2 साल अॻु पेर फिरी वियो।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अपना शहर, अपना घर, मीरपुर खास।
3: खबरी अवां जे शहर खिपरो में फ्री मेडिकल कैंप, तारीख 18 अगस्त ऐं 25 अगस्त 2026 अंगारे जे ॾींहुं सुबुह जो 10 वॻे खां मंझंदि 3 वॻे ताईं लॻी रही आहे। जंहिंमें डॉक्टर असद अज़ीज़, MBBS MS आर्थो, आर्थोपेडिक सर्जन, हॾी ऐं जोड़, गोॾनि जो सूर, चेल जो सूर, कंध जो सूर, अर्कुनि निसा जो सूर, पैदाइशी पेरनि जो टेडो हुजण, टुटल बांह ऐं टंग ऐं हॾियुनि जी कमज़ोरी वारे मरीजन जी मुफ्त चकास कंदो। हंध ज़ैनब मेडिकल सेंटर, डॉक्टर बिलावल हिंगोर जो अस्पताल, वेझो सोढा फ्लोर मिल, 7G रोड, खिपरो। नोट, डॉक्टर साहब हर अंगारे ते OPD कंदा। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर्स 0305-327-6608 ऐं 0344-349-8896।
2: के अपने शहर मीरपुर खास में हैदराबाद की मशहूर फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर शुएब शेख। शुगर, मैदा फालिज ब्लड प्रेशर जिगर से शाम 4 बजे तक मुआयना और इलाज करते हैं। एड्रेस अल शफा मेडिकल सेंटर न्यू टाउन मीरपुर खास। मजीद मालूम के लिए कॉन्टेक्ट नंबर 02-33-87-4405।
4: मशहूर ऐं तजुर्बेकार सीनियर फेको सर्जन डॉक्टर अब्दुल अज़ीज कुरेश परदन बीमारियुनि जो इलाज ऐं अखियुनि जी ॿियुनि बीमारियुनि जो इलाज कंदा आहिनि। टाइम रोज़ाना सुबुह 10 वॻे खां 1 वॻे ताईं, शाम 6 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं। आचर मोकल आहे जुमे जे ॾींहुं ऑपरेशन कया वेंदा। एड्रेस सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान लेज़र अखियुनि जी अस्पताल, सर सैयद रोड ग़रीबाबाद मीरपुर खास। मोबाइल नंबर 03032617077।
5: खुशखबरी हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराण होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिनि। अलहमदुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि हिक दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई। जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, एमसीबी बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 03062447700।
2: कारोबारी हजरात के लिए खुशखबरी, आपके कारोबार की मशहूरी का सबसे बड़ा जरिया खास FM 88 की आवाज़। अखबार मिलाद जलसा स्कूल कॉलेजेस ब्यूटी पार्लर्स कॉस्मेटिक्स शॉप्स जनरल और मेडिकल स्टोर्स बुटीक गारमेंट शॉप्स मोबाइल शॉप्स ज्वेलर शॉप्स अस्पताल फ्री मेडिकल कैंप्स NGOs फूड पॉइंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स शोरूम ऑटो शॉप्स हाउसिंग स्कीम्स क्रिकेट टूर्नामेंट्स सकाफती मेला होटल्स रेस्टोरेंट्स पेट्रोल पंप्स CNG स्टेशन शादी हॉल मुख्तलिफ इकसाम की प्रोडक्ट्स फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड शॉप्स सीड कारपोरेशन सरकारी और गैर सरकारी ऐलानात के इश्तहारात के साथ साथ लाइव ब्रांडेड प्रोग्राम से लगाएं अपने कारोबार को 4 चांद वो भी आपकी तवक्कोआत से कम रेट्स में। तो अभी राब्ता करें मार्केटिंग मैनेजर मोबाइल नंबर 03322724301 और 03333722071।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्द मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: आप सुन रहे हैं,
2: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: जो शहर जो घर सकरंट आए सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
1: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: बाबत घर भातियुनि जे ख़दशनि खे संजीदगी सां वरितो आहे। वॾे वज़ीर खे रज़ा जे घर भातियुनि जो ख़त मिलियो आहे। सिंध सरकार जुडिशियल कमीशन क़ाइमु करण जो फ़ैसिलो कयो। सिंध हुकूमत पारां जुडिशियल कमीशन क़ाइमु करण लाइ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट खे दरख़्वास्त कई वेंदी। जुडिशियल कमीशन खे सिंध ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरी आर्डिनंस 1979 तहत सिविल कोर्ट जा अख़्तियार हूंदा। जुडिशियल कमीशन 30 ॾींहं अंदरि पंहिंजी रिपोर्ट, नतीजा ऐं सिफ़ारिशूं सिंध सरकार खे पेश कंदी। मुकमल ऐं मुनसिफाणी जांच लाइ ज़रूरत पवण ते जुडिशियल कमीशन जे मुदे में वाद बि कई वेंदी। मीर रज़ा अली जो केस फिरोज़ाबाद थाणे ते दाख़िल आहे। मीर रज़ा जी भेण पारां सिक्योरिटी वापसि वठण ते गणती जो इज़हार। संदसि चवणु आहे त असांजी दरख़्वास्त ते सिक्योरिटी लाइ हिकु अहलकार ॾिनो वञे। बिना इतलाउ जे सिक्योरिटी वापसि वरिती वई हुई। शकी गाॾियुनि ज़रिए ख़ानदान जो पीछो कयो पियो वञे।

रावलपिंडी में मुड़स था वैशाणी अंदाज में कत्ल कल हिना जावेद के केस में अकबराई कत्ल में इस्तेमाल कल रस्सी तार हथ पुलिस कत्ल में मुलस जानल मुड़स डॉक्टर फैसल असगर और संदस मुलाजम अजीशान जो टिन ढीह जो जिस्मानी रिमांड हासिल कर वो पुलिस जरियन मूजिब मुख्य जवाबदार डॉक्टर फैसल के पीरसन वालिद के भी जांच में शामिल कदे संदस बयान रिकॉर्ड किया वो गिरफ्तार कल जवाबदार डॉक्टर फैसल पैंजे मुलाजिम जीशान के पैसों की लालच दे कत्ल की वारदात में शामिल किया जवाबदार मुलाजिम जीशान हिना जावेद से हथ बधण और खेस घुटो दियण में संदस मुड़स की मदद कई फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर सुभाणे तहरान जो दौरो कंदो ईरानी परडे वजारत जे तर्जमान इस्माइल बकई चयो आहे त फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर जो दौरो खिते में अमन इस्तेकाम जी कोशिशुनि जो तसलसुल आहे फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर ईरानी सीनियर अख़्तियारनि सां मुलाक़ातूं कंदो फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर ऐं ईरानी परडे वज़ीर अब्बास इराक़ी विच में टेलीफोनिक राब्ते दौरान खिते में अमन सिक्योरिटी ऐं इस्तेकाम जी बहाली जी कोशिशुनि ते ॻाल्हि ॿोल्हि थी ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त दुश्मन ईरान के वेंसवेला बणाइण जो मनसूबो ठाहियो हो पर इएं न थी सघियो ईरानी अवाम जे इतिहाद सां ईरान अहिड़ी ताक़त बणिजी उभरियो जंहिं सॼी दुनिया खे हैरान करे छॾियो ईरान हिन वक़्तु मुआशी ऐं अक्सरी लिहाज़ खां जंग जी हालति में आहे पर मुल्क मुश्किलातुनि बावजूदि मज़बूती सां बीठो आहे गैरक़ानूनी जंगी हालतुनि में बि आवाम जी ख़िदमत लाइ पंहिंजूं समूरियूं कोशिशूं जारी आहिनि जंग जी मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾींदड़ आवाम जे गॾियल मौक़िफ़ जे नतीजे में मुफ़ाहिमती यादाश ताईं पहुचण में मदद मिली जेके माण्हू मुफ़ाहिमत जी गुहाल करे रहिया आहिनि उहे मामलनि खे दुरुस्त अंदाज़ में सम्झी न आहिनि सघिया

थोड़ा तेल बड़ा ठायो घणा ठायो एकड़ा गिरफ्तार कंदा ब्या इंदा ब्या गिरफ्तार कंदा टा इंदा सिंध जा जागी किथे सिंध जो दीवर त

0: लाजी हमके बचाई कराची का वठी कमू शहीद ताई एकड़ो एकड़ो गोट सिंधन जो है त एकड़ो एकड़ो जो चौक है वो बिबलो थिंदो ता मोड़ी सकना
1: संजय विरांगे जी साथ इश्कलाब मिठी में अवामी तहरीक ए सिंधियाणी तहरीक पारां रैली पुलिस एडवोकेट देवतरा ए पी चारो विक्रम मिठूमल हीरालाल समेत ॿारहं अॻवान ऐं कारकुननि खे गिरफ़्तार करे वरितो अवामी तहरीक जे मर्कज़ी सदर एडवोकेट वसंत थरी चयो आहे त सिंध विरहाइण जी कंहिंखे बि साज़िश खे क़बूल न कंदासीं भली गिरफ़्तार कयो अवामी सुजाॻी मुहिम जारी रहंदी पर अमन जमहूरी जिदोजहद तां हथ न खणंदासीं

0: हिकिड़ो हमराह ज़ख़्मी करे मारे छॾियऊं, हिकिड़ो हमराह ज़ख़्मी आहे जेको असांजो किम्स में दाखिल आहे। पुलिस तकरीबन हितां अधु किलोमीटर अॻिते बीठी। पुलिस जी मोबाइल
1: कोट डीजी भरिसां हथियारबंदनि फौरन गोलियूं हणी इंजीनियर खे क़तलु करे छॾियो। हिकु नौजवान ज़ख़्मी। हुसैनाबाद स्टाफ वटि हथियारबंदनि गोलियूं हणी इंजीनियर फैसल गुज़ार भुट्टो खे क़तलु ऐं नौजवान दानियाल भट्टी खे ज़ख़्मी कयो। ज़ख़्मी नौजवान गिम्स इस्पताल मुंतकिल। वारसनि जो जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ धरणो। वारसनि चयो त इंजीनियर फैसल गुज़ार भुट्टो ऐं नौजवान दानियाल भट्टी कार में चोंडको खां खैरपुर वापसि वञी रहिया हुआ त हथियारबंदनि फुरजी कोशिशि कई। गाॾी न बीहाइण ते हथियारबंदनि फायरिंग करे ॾिनी। नोटिस वठी फौरी तौर ते जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो हो।

सघियो। पाणी शहर में काहे पियो। मंगणहार महले वटां माइनर खे 20 फुट गारो पियो। इतला बावजूद आबाशी अमलो न पहतो। केतिरा ई घर पाणी हेठि अची विया। मुतासिरनि जूं दाहूं नोटिस वठी फौरी तौर ते गारो बंदि कराए पाणी निकाल कराइण जो मुतालबो। बलूचिस्तान जे शहर सोबतपुर भरिसां 3 नौजवाननि जा गोलियूं लॻल लाश ते। जियाणी थाणे जी हद ॻोठे

हलंदड़ पुराणो तकरार ॿीहर भड़की उथियो। हिकु नौजवान क़तल कोट पलवारे इलाइक़े में जागीरानी बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में झेड़ो थी पियो। गोलियूं लॻण सां नौजवान आसिफ़ जागीरानी थरे ते ई दम ॾिनो, लाश इस्पताल मुंतकिल। धुरनि में शिकताण बरक़रार, पुलिस जी नफ़री तलब। मीरापुर भरिसां कार इल्ज़ाम हेठि मुड़ुसु हथां ज़ाल क़तलु। जवाबदार गोश बख़्श कोसो पिस्टल जा फायर करे ज़ाल नज़ीरा खे क़तलु करण बाद फ़रार थी वियो, लाश इस्पताल मुंतकिल।

कराची जे सचल वारे इलाइक़े में अदाकार हैदर कादरी ते मुबैना तशदुद। हैदर कादरी चयो आहे त छह जवाबदारनि तशदुद जो निशानो बणायो। मुंहिंजे दोस्त खे बि मारकुट कई वई, जवाबदारनि खे नथो सुञाणिया। होटल ते वेठल पुलिस अहलकार मुदाख़लत कई त जवाबदारनि हवाई फायर कया ऐं फरार थी विया। जवाबदार गाॾियुनि ऐं मोटरसाइकिलनि ते सवार हुआ।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चा की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अमेरिका जी मुस्तकिल जगबंदी लाइ पाकिस्तान जूं कोशिशूं जारी आहिनि। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर सुभाणे ईरान जे दौरे ते पहुचंदो। ईरानी इख़्तियारनि सां मुलाकात कंदो। ईरानी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त फील्ड मार्शल जो दौरो ख़िते में अमन इस्तेहकाम बाबति पाकिस्तानी कोशिशुनि जो तसलसुल आहे। गुज़िरियल ॾींहुं फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ऐं ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास अराग़ची विच में फ़ोन ते राब्तो थियो, जंहिं दौरान हिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल कई वई।

इस्लामाबाद में गुजर रात तेज बरसात सबब केतरा इलाका पानी हेठ अची वा रोड रस्ता पानी हेठ केतन इलाकन में पानी घर में दाखिल थी वो मुल्तान बनू सवात बेन इलाकन में भी बरसात कराची में मौसम जुड़ाली मुख्तलिफ इलाकन में बूंदाबादी सबब मौसम खुशगवार कराची के मुख्तलिफ इलाकन में मुख्तलिफ रोड हादसन में अठ जना हयातियों विञाए वेठा सोल्जर बाजार मलीर आयशा मंजिल बेन कासिम टाउन बेन इलाकन में रोड हादसा ट्रैफिक पुलिस मूजिब कराची में हलंदड़ साल मुख्तलिफ रोड हादसन में 603 हयातियों जया थी 7,467 माण्हू जख्मी थिया हेवी ट्रैफिक हादसन में फोत थियल शहरियुनि जो अंक 184 आहे।

मुसाफिर गाॾियुनि खां वतो वठण जी शिकायत ते ज़िले जा 49 पुलिस अहलकार मुअतल। जांच जो हुकुम डी आई जी सखर नासिर आफ़ताब पठाण अहलकारनि खे सखर रिपोर्ट करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। मुअतल थियलनि में आसिफ शेख, नादिर गुनियो, फ़हीम अब्बास शहर, मोहम्मद मुराद, वसीम गोपांग ऐं ॿिया शामिल। ज़रियन मूजिब अहलकारनि खे मेरान हाईवे ते कायम पॉइंटनि तां गाॾियुनि मां वतो वठण जे इल्ज़ामनि सबबि मुअतल कयो वियो। सकरण में ॿिनि ॿारनि खे पोलियो हुजण जो शक ज़ाहिर। ॻोठ रहमून किरियो वासी शाह ज़मान ऐं एसान सोलंगी खे पोलियो हुजण जो शक ज़ाहिर कयो वियो। हिकु महीने जी शाह ज़मान जी हिकु टंग ऐं पेर फिरी वञण सबबि वारिसनि पोलियो वायरस जो शक ज़ाहिर कयो। 7 वरियनि जे एसान अली जो 2 साल अॻु पेर फिरी वियो हो। वारिसनि जो चवणु आहे त ॿिन्ही ॿारनि जा जुज़ा वठी चकास लाइ लेपाटियूं मणिया वञनि। ओडी जी में हथियारनि जे ज़ोर ते पुरदौरान मुज़ामत ते नौजवान क़तल, वारिसनि पारां लाश ॾेखे ॾियणो। हुसैनाबाद स्टाफ वटि हथियारबंदनि नाकाबंदी करे ईंदड़ वेंदड़ गाॾियुनि खां पुर कई। मुज़ामत ते ख़ैरपुर वासी नौजवान फैसल गुलज़ार भुटो मारिजी वियो, संदसि दोस्त ज़ख़्मी। वारिसनि पारां वाके वारे हंधि लाश रखी ॾियणो। रोड ब्लॉक कातिल पोरी गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। पिरियालो वसां कयल इल्ज़ाम हेठि नौजवान नारी पीउ हथां क़तल, जवाबदार फरार। कोठ मां बख़्श नारेजो में जवाबदार आशिक नारेजो पंहिंजी धीउ शकीला खे क़तल करे छॾियो। इतलाउ ते हथ जी पुलिस वाके वारे हंधि पहुची लाश इस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो।

कानपुर में बरसा पानी के वारे बिन धुरियन में छेड़ो फायरिंग में नौजवान कतल घोट अब्दुल करीम गिरानी में गिरानी बिरादरी की बिन धुरियन में छेड़ो फायरिंग के नतीजे में पंजवी वरियन जो अहसन अली पुट अब्दुल वाहिद गिरानी मारजी वो मकसूद जो लाश तालुक अस्पताल मुंतकिल सखर में गुजर दी कतल थियल नारी के वारिसन जो कातिलन की गिरफ्तारी लाए लाश रखी एहतजाज नारी साजिदा मीरानी के वारिसन जावदार की गिरफ्तारी लाए एहतजाज किया वारिसन जो चवण है साजिदा मीरानी के संदस मुड़स अली हसन मीरानी कतल किया है करू अड़ पड़ता जवाबदार असि न्याणी के कतल किया है पुलिस जवाबदार की साथारी बणियल है डीआईजी सखर एसएसपी नोटिस वी कातिल गिरफ्तार किया

सां बेरहम पुट माउ के घर अंदर जंजीरन सां बधी छो। वीडियो सोशल मीडिया से वायरल। पुट कूड़ो खान लगारी में पीर सरोरत हसीना लगारी के पत्थर दिल पुट असद लगारी जंजीरन सां बधी छो। घर अंदर कैद जंजीरन सां बधल औरत की वीडियो सोशल मीडिया से वायरल। औरत हसीना लगारी जो चवण है पुट पंज दिन का जंजीरन सां बधी छो है। सख्त तशद भी कन्द है खेस जंजीरन में आजाद कराया।

0: नवाबशाह भरसा मेहरान हाईवे ते तेज रफ्तार ट्रक जो रिक्शा के टक्कर वजना पोत पिछेरी चौकी वट हादसे में अनवर तनवीर कासगरी पोत पुलिस जो चवण है पोत थी वियल पी पुट घोट साल कासगरी जा रवासी है लाश अस्पताल मुंतकिल किया वा इलाके इब्राहिम मैत्री में बिजली की बंदिश खिलाफ प्रवासियों जो के इलेक्ट्रिक ऑफिस अगर थरणो टायरन के बाहू डेई रोड ब्लॉक इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी मुजाहिद जो चवण है बिल भरण बावजूद बिजली बंद है जैसे पीने के पानी जो संगीन बहरान पैदा थी वो है बिजली बहाल न थी तो एहतजाज जारी रखी वो
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अक्सर वालदेन सवाल किंदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। ये असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। हीअ पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।

अमेरिका की मुस्तकिल जंगबंदी लाए पाकिस्तान जो कोशिशों जारी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सुभाणे ईरान के दौरे ते पहुंचंदो, ईरानी अख्तियारन से मुलाकात कंदो। ईरानी परदेही वज़ारत के तर्जुमान इस्माइल वकाई चया है फील्ड मार्शल जो दौरों खिते में अमन इस्तेकाम बाबत पाकिस्तानी कोशिशों जो तसलसल है। गुजल ढी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास अराग़ची विच में फोन से राबतो थो, जै दौरान खिते की सूरत हाल से गाल भुल कई वही। ईरान खिलाफ अमेरिका की मुआशी जंग में मदद कदड़ मुल्क के मफादन के निशानो बणाई वे। ईरान के कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई है अमेरिका पैं सिफातकारी गाड़ियों से धोखो किया। पूरी दुनिया जानी चुकी है डोनाल्ड ट्रंप एक बेवकूफ शख्स है। मक्का माहिदे बाबत सवाल से मोहसिन रज़ाई माहिदे से जाहिर थे तो अमेरिका इन मुल्क के आगाह कर खितो छड़न चाहे तो। ईरान के सदर मसूद पेशकियान दुश्मन ईरान के वेंसवेला पाण जो सोचो, पर ईरान अवाम के तहत से ईरान अड़ी ताकत बणजी उभरियो जै दुनिया के हैरान कर छो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सुभाणे खां 28 अगस्त ताईं बरतानिया जो सरकारी दौरो कंदो। परडे॒ही तर्जुमान मूजिब इसहाक डार बरतानवी परडे॒ही वज़ीर समेत बि॒यनि आला अमलदारनि सां मुलाक़ातूं कंदो। मुलाक़ातनि में सोमालिया में हीअंर क़वाल पाकिस्तानियुनि जो मामिलो थारियो वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी नून लीग जे सदर नवाज़ शरीफ़ सां लाहौर में मुलाक़ात। मुल्क जी सियासी सूरत हाल ते ख़ालिद जी डे॒ वटि मुलाक़ात में पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ बि शरीक़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो आहे असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: था अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप सां गॾु, मां गुलाब खान भेण।

सिंध राउंड अप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। हैदराबाद में हज़ारे माण्हुनि जो वहदत सिंध मार्च, धरतीअ जे इंच इंच जी हिफ़ाज़त कबी, अॻवाणनि जो ख़िताब। सिंध जा 6,220 स्कूल ज़बून करार, पढ़ाई बंदि, शागिर्द मुतबादिल स्कूलनि ॾांहुं मोकिलण जो हुकुम। दादूअ में 3 महीननि जो ॿार 1.5 लख में मुबैना विकिरो, पीउ ते इल्ज़ाम, अमर जूं मीडिया आरोदाहूं। मीरपुर ख़ासि में 46 सेकेंडरी स्कूल टीचर भर्ती, आईडीज़ बि अलाट थी वियूं। हैदराबाद सखर मोटरवे खां अॻु पंजाब में नओ मनसूबो, सिंध वफ़ाक जे ॿिटे मयार ते एतिराज़ वारे छॾियो। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा, पोरियतनि जी महिनत, तबकाती फ़र्क़ ऐं समाजी तब्दीलीअ जी जिदोजहद। सिंध एक्शन कमेटी पारां सिंध जे विरागे ऐं वसीलनि ते वधीक वालार वारनि साज़िशुनि ख़िलाफ़ काल्ह हैदराबाद में कासमाबाद पूनम चौक खां वहदत सिंध मार्च कयो वियो। मार्च वाधू वाह रोड नसीम नगर चौक खां थींदो, वाधू वाह गेट ते पहुची जलसे जी सूरत इख़्तियार करे वियो। मार्च में सिंध एक्शन कमेटी में शामिल जमातुनि समेत सियासी, क़ौमपरस्त ऐं तरक़ी पसंद पार्टियुनि जे हज़ारे कारकुननि शिरकत करे सिंध जो विरागो नामंज़ूर, सिंध जे वसीलनि ते वालार नामंज़ूर जा ज़ोरदार नारा हया। अॻवाणनि ख़िताब कंदे चयो त सिंध जी तारीख़ ऐं जाग्राफ़ी हैसियत बचाइण जे लाइ तहरीक जो ही पहिरीं शुरूआत जो मरहलो आहे। सिंध जा किरोड़े माण्हू रोडनि ते निकिरी ईंदा ऐं पंहिंजे वतन जी हिफ़ाज़त करे ॾेखारींदा। हुननि चयो त सिंध धरतीअ जा वारस ऐं नौजवान न रुगो सिंध पर धरतीअ जा वसीला बि बचाईंदा। हीअ हुकमराननि सिंध जो विरागो करण जा ख़्वाब ॾिसण छॾे ॾिनि। हिननि वधीक चयो त वहदत सिंध तारीख़ी मार्च पंहिंजे वतन ऐं धरतीअ सां अहद वफ़ा जो ॾींहुं मल्हाए सिंध दुश्मन हुकमराननि खे पैगाम ॾेई छॾियो आहे त सिंध जा गैरतमंद माण्हू सिंध जी विरासत कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदा। तालीम खाते पारां सिंध जे 6,220 स्कूलनि खे ज़बून करार ॾेई पढ़ाई बंदि करण जो हुकुम जारी करे छॾियो आहे। अख़्तियारनि मूजिबि मॉनसून जे मौसम दौरान ज़बून हाल इमारतुनि जे शागिर्दनि खे वेझनि स्कूलनि में मुंतकिल करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। उन ॾस में तालीम खाते डिप्टी कमिश्नरनि खे चयो आहे त उहे ज़बून हाल इमारतुनि वारनि स्कूलनि जे वेझो मुतबादिल स्कूल ॻोल्हनि त जीअं शागिर्दनि खे उते मुंतकिल करे सघिजे। खाते पारां उहो बि ॿुधायो वियो आहे त ज़बून हाल स्कूलनि जी मरम्मत कॾहिं शुरू ऐं कॾहिं मुकमल थींदी, शागिर्दनि मुतबादिल स्कूलनि मां पंहिंजे स्कूलनि ॾांहुं कॾहिं वापसि ईंदा। ज़बून हाल इमारतुनि वारा उहे स्कूल सूबे जे 30 ज़िलनि में आहिनि। ज़बून हाल इमारतुनि जो सभ खां वधीक अंगु बदीन, मीरपुर ख़ासि ऐं थरपारकर ज़िलनि में आहे। दादू मिटनि में हिन जे मासूम ॿार खे मुबैना तौरु 1.5 लख रुपियनि एवज़ विकिरो करण जो इल्ज़ाम साम्हूं अचण बाद एस एक्शन पुलिस ॿार जे वाल सुलेमान पवार खे हिरासत में वठी मामले जी जाच शुरू करे छॾी। मुतासिर औरत पंहिंजे भाउ राशिद अली ऐं मासूम नियाणियुनि ज़ाहिदा, निदा ऐं एमन सां गॾु एहतजाज कयो ऐं ॿार जी बाज़ियाबी जे लाइ अपील कई। मुतासिर औरत पंहिंजे मुड़ुसु सुलेमान पवार ते इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो त संदसि 3 महीननि जो मासूम पुटु महराज खे मुबैना तौरु हिकु निजी बैंक जे मुलाज़िम अक्सा जमाली खे 1.5 लख रुपियनि एवज़ कयो विकिरो कयो आहे। जंहिं वाके खे 1 हफ़्तो गुज़री चुको आहे पर संदसि ॿार वापसि नाहे थियो। औरत जो वधीक चवणु हो त खेसि मुबैना तौरु नशे आवर टिकियूं ॾिनियूं वयूं, जंहिंखां पोइ संदसि मासूम पुट खे संदसि मर्ज़ी ऐं ॼाण खां सवाइ मुबैना तौरु विकिरो कयो वियो। मुतासिर अमर जो चवणु हुयो त खेसि पंहिंजे ॿार जे विकिरे बाबति सख़्त ख़दशा आहिनि ऐं हू गुज़िरियल 1 हफ़्ते खां मासूम पुट जी वापसी जे लाइ दरबदर थी रही आहे। हुन अख़्तरनि खां मुतालबो कयो त मामले जी जाच कराई वञे, ॿार खे फौरी तौरु बाज़ियाब कराए खेसि जे हवाले कयो वञे। शिकायत मिलण बाद एस एक्शन पुलिस मुतासिर औरत जे मुड़ुसु सुलेमान पवार खे हिरासत में वठी मामले जी जाच शुरू करे छॾी आहे। तालीम खाते में उस्तादनि जे जाली भर्तियुनि जो स्कैंडल ज़ाहिर, 6 ॼणनि खे ग्रेड 16 में सेकेंडरी स्कूल टीचर भर्ती करे खेनि जाली आईडीज़ बि अलाट कयूं वयूं। तालीम खाते अकाउंटेंट जनरल सिंध खे ख़तु लिखी मीरपुर ख़ासि में भर्ती थियल 6 जाली उस्तादनि जूं पघारूं बंदि करणु ऐं खयल पघारुनि वारी रक़म वापसि वठण जी हिदायत कई आहे। उन सिलसिले में मीरपुर ख़ासि ज़िले में ग्रेड 16 में 6 सेकेंडरी स्कूल टीचर फहद अली, अनिल कुमार, शाहरुख ख़ान, ज़ाहिद अली, अरशद अली ऐं आबदा परवीन भर्ती कया विया आहिनि। ज़रियनि मूजिबि स्कूल एजुकेशन खाते उन्हनि भर्तियुनि खे जालसाज़ी करार ॾिनो आहे। मज़े जी ॻाल्हि उहा आहे त जाली तौर ते भर्ती कयल उस्तादनि खे पर्सनल आईडी नंबर पिणु अलाट कया विया।
खाते जी आईटी सेक्शन जाली ऑर्डर ऑफर ते बारकोड पिन लगायो। जाली बारकोड खां पोए आईटी सेक्शन पारां जाली आईडी अलॉट कई वही। उस्ताद जी भर्ती जाली साबित थियण खां पोए खाते अकाउंटेंट जनरल सिंध के खत लिखी जाली उस्तादनि जूं पघारूं रोकण ऐं वरितल पघारूं वापसि वठण जूं हिदायतूं ॾिनियूं आहिनि। जाली उस्तादनि जे पर्सनल आईडीज़ खे ब्लॉक कयो वियो आहे। स्कूल एजुकेशन खाते उस्तादनि जे जाली भर्ती कंदड़ कामोरनि ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई नाहे कई। हैदराबाद सखर मोटरवे ते कम शुरू थियण खां अॻे ई पंजाब में नओं वॾो मनसूबो शुरू करण ते सिंध वफ़ाक़ी हुकूमत आॾो एतिराज़ उथारे छॾियो। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार जी सदारत हेठि एकनिक इजलास में सिंध हुकूमत वफ़ाक जे मुबैना ॿिटे मयार ते ख़सियत जो इज़हार कयो। सिंध हुकूमत इजलास में मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो त वफ़ाक़ी हुकूमत वादे ख़िलाफ़ी करे रही आहे। सूबाई वज़ीर जाम ख़ान शोरो मुतालबो कयो त लाहौर सियालकोट 296 किलोमीटर मोटरवे खां अॻु हैदराबाद सखर मोटरवे ते कमु शुरू कयो वञे। ज़रियनि मूजिबि जाम ख़ान शोरो चयो त हैदराबाद सखर मोटरवे पुराणो ऐं इंतिहाई अहम मनसूबो आहे। केतिरा ई साल गुज़रण बावजूदु ॿिनि वज़ीर आज़मनि जे वाइदनि ते अमल न थी रहियो आहे। जाम ख़ान शुरू वधीक चयो त हिकु भेरे सिंध हुकूमत ऐं सिंध जी आवाम सां कयल वाइदे जी भञकड़ी कई पई वञे। हुन एकनिक इजलास में सवाल उथारियो त वफ़ाक़ी हुकूमत हिन मामले ते संजीदगी जो मुज़ाहिरो छो न करे रही आहे। काल्ह ठारू शाह जे अलशफ़ा मेडिकल सेंटर में औरत टिनि ॿारनि खे जनमु ॾिनो। ॿार सिहतमंद ऐं वालदेन में ख़ुशीअ जी लहर छाइजी वई। ठारू शाह नौशरफ रोड लिंक रोड ते वाक़े अलशफ़ा मेडिकल सेंटर में डॉक्टर नसीम शाह वटि भंगू भेण वासी औरत सनम लाल दिलदार खंड टिनि पुटनि खे जनमु ॾिनो। जिन पुटनि जी पैदाइश ते वालदेन में ख़ुशीअ जी लहर छाइजी वई। उन मौक़े ते डॉक्टर नसीम शाह मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त माउ ऐं ॿार बिल्कुलु सिहतमंद आहिनि। जॾहिं त अहिड़ी ख़बर पवण ते सवेरु शहरी मेडिकल सेंटर ते पहुची विया। लाड़काणू भरिसां बकापुर थाणे जे हद ॻोठ वॾा महर रोड ते चिंकीअ ते हथियारबंदनि फायरिंग करे टिनि ॼणनि उस्ताद मोहम्मद वासण औरत ज़ाहिदा जमाली मठार जमाली ऐं क़ुर्बान जमाली खे ज़ख़्मी करे छॾियो। इतलाह ते पुलिस वाक़िए वारे हंधि पहुची तफ़सील वठी ज़ख़्मीनि खे खणाए इलाज जे लाइ लाड़काणू ट्रामा सेंटर मुंतक़िल करे छॾियो, जिथे ज़ख़्मी औरत ज़ाहिदा जमाली दम ॾेई छॾियो। जॾहिं त ज़ख़्मीनि खे तिबी इमदाद ॾिनी वई। उन मौक़े ते मक़तूला औरत जे वारिस रुखसाना जमालीअ ॿुधायो त ॻोठ गाज़ी ख़ान जतोईअ में तरसियल ज़ाहिदा जमालीअ जे पीउ ग़ुलाम अब्बास जानब जमाली मुर्ता जमाली समेत ॿियनि हथियार बंदनि चिंचे ते फायरिंग करे ज़ाहिदा खे क़तलु करे मंठार ऐं क़ुर्बान जमाली खे ज़ख़्मी करण बाद फरार थी विया आहिनि। हुन लाड़काणे जे DIG ऐं SSP खे अपील कई आहे त वाक़े जो नोटिस वठी मुलविस हथियार बंदनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। हुन हवाले सां जवाबदार ऐं मक़तूला औरत जे विच में घरू मामिलो हलंदड़ आहे, जंहिं मामले तां अहिड़ो वाक़ियो पेश आयो आहे। ॿिए पासे पोस्टमार्टम बाद मक़तूला जे लाश वारसनि हवाले कयो वियो, जिते लाश घर पहुचण ते घर में कोराम अची वियो। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। इंसानी समाज जे तारीख़ खे जेकॾहिं गौर सां ॾिसजे त उहा रुगो बादशाहनि हुकुमराननि ऐं जंगनि जी तारीख़ न आहे, पर उहा महिनत वसीलनि दौलत ऐं इक़्तदार जे विर्छ जी तारीख़ पिणु आहे। क़दीम दौर जी गॾियल मिल्कत वारे समाज खे ग़ुलामदारी जागीरदारी ऐं पोइ सरमाएदारी निज़ाम ताईं समाज मुसलसल तब्दील थींदो रहियो आहे। पर हिकु सवाल हर दौर में मौजूदु रहियो आहे, जेको माण्हू दौलत ऐं पैदावार पैदा कनि था, उन्हनि खे उन दौलत ऐं फ़ैसिलनि में केतिरो हिसो हासिलु आहे। अॼु दुनिया जूं बुलंद इमारतूं, कारखाना, रोड, बंदरगाहूं, फ़सुल, सनतूं, टेक्नोलॉजी ऐं रोज़मरह जी ज़िंदगी जूं बेशुमार सहूलियतूं लखें किरोड़े पुरहतनि जी महिनत जो नतीजो आहिनि। मज़दूर पंहिंजे जिस्म, ज़हन ऐं वक़्त सां समाज खे अॻिते वधाइनि था, पर केतिरनि ई हालतुनि में पैदावार कंदड़ ऐं पैदावार मां फ़ाइदो हासिलु कंदड़ विच में वॾो फ़र्क़ु मौजूदु आहे। हिकु किलो मज़दूर शायदि महदूद ताक़त रखे, पर जॾहिं हज़ारे मज़दूर मुनज़्ज़म थियनि था त उन्हनि जी इजतमाही ताक़त हिकु वॾी मुआशी ऐं समाजी क़ुवत बणिजी सघे थी। साॻी तरह हिकु अकेलो हारी पंहिंजे मसइले सां विढ़ी सघे थो, पर मुनज़्ज़म हारी तहरीक ज़मीन, पाणी, उजरत ऐं ज़रई पॉलिसियुनि बाबति आवाज़ बुलंद करे सघे थो। उन ई करे तारीख़ में पोरियतनि खे विरिहाइण बि हिकु अहम हिकमत अमली रही आहे। कॾहिं ज़ात, कॾहिं बिरादरी, कॾहिं ॿोली, नसल, इलाइक़ो या सियासी नफ़रतुनि खे बुनियादु बणाए मिनत कंदड़ माण्हुनि खे हिक ॿिए खां परे कयो वञे थो। नतीजे में ग़रीब जो दुश्मन बणिजी वञे थो, जॾहिं त असल मुआशी ऐं समाजी ढांचे ते सवाल पोइ ते रहिजी वञे थो। सिंध जे हवाले सां पोरियतुनि जो सवाल अञा ताईं वधीक वसीउ आहे त हिते मज़दूर ऐं हारीअ जो मसइलो रुगो उजरत जो मसइलो न आहे,
पर ज़मीन पानी कुदरती वसीलन रोज़गार तालीम सेहत सकाफती सुजाणप सियासी अख्तियार से भी गुंजल है। सिंध की तारीख में हारिन मजदूर माहिगिर बन मेहनत कदड़ तबक जिदोजहद उन गाल जो सबूत आन तो रुगो हुक्मरान की तारीख ना है पर अवाम पुरियतन की जिदोजहद की भी तारीख पिण है। आलमी सतह से भी सनती इनकलाब का मजदूर तहरीकुन अठ कलाक कम मुनासिब उजरत यूनियन ठाण महफूज कम करण वो माहौल बिन बुनियादी हकन के लिए डिघी जिदोजहद कई। पर अज के दौर अग का मुख्तलिफ़ है। टेक्नोलॉजी डिजिटल मईशियत मसनू जहानत पैदावार जहा नवा दरवाजा खुलिया सागे वक्त रोजगार की गैर यकीनी ठेकेदारी निज़ाम घट उजरत महंगाई दौलत के वधंदड़ गैर बराबरी जड़ा मसला पिण मौजूद हैं। अज पोरियत जो मतलब सिर्फ कारखाने में कम कदड़ मजदूर ना है। एप से कम कदड़ ड्राइवर डिलीवरी राइडर ऑफिस जो मुलाजिम सहाफ़ी उस्ताद फ्रीलांसर नंढो हारी माहिगीर पांजे मिनट सा गद सफर कदड़ हर मानू जदीद पोरियत समाज जो हिस्सो है। उन्हीं करे अज की जरूरत एक अड़े नए इतमाई सोच की है जेका नफरत तशद्दुद बदरा बराबरी जमहूरियत समाजी इंसाफ मुआशी हकन से कायम होजे।

0: जो हिन वक़्त जो सिंध राउंडअप ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त अलह निगहबान।
1: जो शहर जो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8।
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुझो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए तो आसान जवाब यो आ ही बार भी असां वटि अल्लाह ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
4: सुबह

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप सां गॾु, मां गुलाब खान बेण।

सिंध राउंड अप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। हैदराबाद में हज़ारे माण्हुनि जो वहदत सिंध मार्च, धरतीअ जे इंच इंच जी हिफ़ाज़त कबी, अॻवाणनि जो ख़िताब। सिंध जा 6,220 स्कूल ज़बून करार, पढ़ाई बंदि, शागिर्द मुतबादिल स्कूलनि ॾांहुं मोकिलण जो हुकुम। दादूअ में 3 महीननि जो ॿार 1.5 लख में मुबैना विकिरो, पीउ ते इल्ज़ाम, अमर जूं मीडिया आरोदाहूं। मीरपुर ख़ासि में 46 सेकेंडरी स्कूल टीचर भर्ती, आईडीज़ बि अलाट थी वियूं। हैदराबाद सखर मोटरवे खां अॻु पंजाब में नओ मनसूबो, सिंध वफ़ाक जे ॿिटे मयार ते एतिराज़ वारे छॾियो। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा, पोरियतनि जी महिनत, तबकाती फ़र्क़ ऐं समाजी तब्दीलीअ जी जिदोजहद। सिंध एक्शन कमेटी पारां सिंध जे विरागे ऐं वसीलनि ते वधीक वालार वारनि साज़िशुनि ख़िलाफ़ काल्ह हैदराबाद में कासमाबाद पूनम चौक खां वहदत सिंध मार्च कयो वियो। मार्च वाधूवा रोड नसीम नगर चौक खां थींदो, वाधूवा गेट ते पहुची जलसे जी सूरत इख़्तियार करे वियो। मार्च में सिंध एक्शन कमेटी में शामिल जमातुनि समेत सियासी, क़ौमपरस्त ऐं तरक़ी पसंद पार्टियुनि जे हज़ारे कारकुननि शिरकत करे सिंध जो विरागो नामंज़ूर, सिंध जे वसीलनि ते वालार नामंज़ूर जा ज़ोरदार नारा हया। अॻवाणनि ख़िताब कंदे चयो त सिंध जी तारीख़ ऐं जाग्राफ़ी हैसियत बचाइण जे लाइ तहरीक जो ही पहिरीं शुरूआत जो मरहलो आहे। सिंध जा किरोड़े माण्हू रोडनि ते निकिरी ईंदा ऐं पंहिंजे वतन जी हिफ़ाज़त करे ॾेखारींदा। हुननि चयो त सिंध धरतीअ जा वारस ऐं नौजवान न रुगो सिंध पर धरतीअ जा वसीला बि बचाईंदा। हीअ हुकमरान सिंध जो विरागो करण जा ख़्वाब ॾिसण छॾे ॾियनि। हिननि वधीक चयो त वहदत सिंध तारीख़ी मार्च पंहिंजे वतन ऐं धरतीअ सां अहद वफ़ा जो ॾींहुं मल्हाए सिंध दुश्मन हुकमराननि खे पैगाम ॾेई छॾियो आहे त सिंध जा गैरतमंद माण्हू सिंध जी विरासत कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदा। तालीम खाते पारां सिंध जे 6,220 स्कूलनि खे ज़बून करार ॾेई पढ़ाई बंदि करण जो हुकुम जारी करे छॾियो आहे। अख़्तियारनि मूजिबि मॉनसून जे मौसम दौरान ज़बून हाल इमारतुनि जे शागिर्दनि खे वेझनि स्कूलनि में मुंतकिल करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। उन ॾस में तालीम खाते डिप्टी कमिश्नरनि खे चयो आहे त उहे ज़बून हाल इमारतुनि वारनि स्कूलनि जे वेझो मुतबादिल स्कूल ॻोल्हनि त जीअं शागिर्दनि खे उते मुंतकिल करे सघिजे। खाते पारां उहो बि ॿुधायो वियो आहे त ज़बून हाल स्कूलनि जी मरम्मत कॾहिं शुरू ऐं कॾहिं मुकमल थींदी, शागिर्दनि मुतबादिल स्कूलनि मां पंहिंजे स्कूलनि ॾांहुं कॾहिं वापसि ईंदा। ज़बून हाल इमारतुनि वारा उहे स्कूल सूबे जे 30 ज़िलनि में आहिनि। ज़बून हाल इमारतुनि जो सभ खां वधीक अंगु बदीन, मीरपुर ख़ासि ऐं थरपारकर ज़िलनि में आहे। दादू मिटनि में हिन जे मासूम ॿार खे मुबैना तौरु 1.5 लख रुपियनि एवज़ विकिरो करण जो इल्ज़ाम साम्हूं अचण बाद ए सेक्शन पुलिस ॿार जे वाल सुलेमान पवार खे हिरासत में वठी मामले जी जाच शुरू करे छॾी। मुतासिर औरत पंहिंजे भाउ राशिद अली ऐं मासूम नियाणियुनि ज़ाहिदा, निदा ऐं एमन सां गॾु एहतजाज कयो ऐं ॿार जी बाज़ियाबी जे लाइ अपील कई। मुतासिर औरत पंहिंजे मुड़ुसु सुलेमान पवार ते इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो त संदसि 3 महीननि जो मासूम पुटु महराज खे मुबैना तौरु हिकु निजी बैंक जे मुलाज़िम अक्सा जमाली खे 1.5 लख रुपियनि एवज़ कयो विकिरो कयो आहे। जंहिं वाके खे 1 हफ़्तो गुज़री चुको आहे पर संदसि ॿार वापसि नाहे थियो। औरत जो वधीक चवणु हो त खेसि मुबैना तौरु नशे आवर टिकियूं ॾिनियूं वयूं, जंहिंखां पोइ संदसि मासूम पुट खे संदसि मर्ज़ी ऐं ॼाण खां सवाइ मुबैना तौरु विकिरो कयो वियो। मुतासिर अमर जो चवणु हुयो त खेसि पंहिंजे ॿार जे विकिरे बाबति सख़्त ख़दशा आहिनि ऐं हू गुज़िरियल 1 हफ़्ते खां मासूम पुट जे वापसीअ जे लाइ दरबदर थी रही आहे। हुन अख़्तरनि खां मुतालबो कयो त मामले जी जाच कराई वञे, ॿार खे फौरी तौरु बाज़ियाब कराए खेसि जे हवाले कयो वञे। शिकायत मिलण बाद ए सेक्शन पुलिस मुतासिर औरत जे मुड़ुसु सुलेमान पवार खे हिरासत में वठी मामले जी जाच शुरू करे छॾी आहे। तालीम खाते में उस्तादनि जे जाली भर्तियुनि जो स्कैंडल ज़ाहिर, 6 ॼणनि खे ग्रेड 16 में सेकेंडरी स्कूल टीचर भर्ती करे खेनि जाली आईडीज़ बि अलाट कयूं वयूं। तालीम खाते अकाउंटेंट जनरल सिंध खे ख़त लिखी मीरपुर ख़ासि में भर्ती थियल 6 जाली उस्तादनि जूं पघारूं बंदि करणु ऐं खयल पघारुनि वारी रक़म वापसि वठण जी हिदायत कई आहे। उन सिलसिले में मीरपुर ख़ासि ज़िले में ग्रेड 16 में 6 सेकेंडरी स्कूल टीचर फहद अली, अनिल कुमार, शाहरुख ख़ान, ज़ाहिद अली, अरशद अली ऐं आबदा परवीन भर्ती कया विया आहिनि। ज़रियनि मूजिबि स्कूल एजुकेशन खाते उन्हनि भर्तियुनि खे जालसाज़ी करार ॾिनो आहे। मज़े जी ॻाल्हि उहा आहे त जाली तौर ते भर्ती कयल उस्तादनि खे पर्सनल आईडी नंबर पिणु अलाट कया विया।
खाते जी आईटी सेक्शन जाली ऑर्डर ऑफर ते बारकोड पिन लगायो। जाली बारकोड खां पोए आईटी सेक्शन पारां जाली आईडी अलॉट कई वही। उस्ताद जी भर्ती जाली साबित थियण खां पोए खाते अकाउंटेंट जनरल सिंध के खत लिखी जाली उस्तादन जूं पघारूं रोकण ऐं वरतल पघारूं वापसि वठण जूं हिदायतूं ॾिनियूं आहिनि। जाली उस्तादनि जे पर्सनल आईडीज़ खे ब्लॉक कयो वियो आहे। स्कूल एजुकेशन खाते उस्तादनि जे जाली भर्ती कंदड़ कामोरनि ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई नाहे कई। हैदराबाद सखर मोटरवे ते कम शुरू थियण खां अॻे पंजाब में नओं वॾो मनसूबो शुरू करण ते सिंध वफ़ाक़ी हुकूमत आॾो एतिराज़ उथारे छॾियो। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार जी सदारत हेठि एकनिक इजलास में सिंध हुकूमत वफ़ाक जे मुबैना ॿिटे मयार ते ख़सियत जो इज़हार कयो। सिंध हुकूमत इजलास में मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो त वफ़ाक़ी हुकूमत वादे ख़िलाफ़ी करे रही आहे। सूबाई वज़ीर जाम ख़ान शोरो मुतालबो कयो त लाहौर सियालकोट 296 किलोमीटर मोटरवे खां अॻु हैदराबाद सखर मोटरवे ते कमु शुरू कयो वञे। ज़रियनि मूजिबि जाम ख़ान शोरो चयो त हैदराबाद सखर मोटरवे पुराणो ऐं इंतिहाई अहम मनसूबो आहे। केतिरा ई साल गुज़रण बावजूदु ॿिनि वज़ीर आज़मनि जे वाइदनि ते अमल न थी रहियो आहे। जाम ख़ान शुरू वधीक चयो त हिक भेरे सिंध हुकूमत ऐं सिंध जी आवाम सां कयल वाइदे जी भञकड़ी कई पई वञे। हुन एकनिक इजलास में सवाल उथारियो त वफ़ाक़ी हुकूमत हिन मामले ते संजीदगी जो मुज़ाहिरो छो न करे रही आहे। काल ठारू शाह जे अलशफ़ा मेडिकल सेंटर में औरत टिन ॿारनि खे जनम ॾिनो। ॿार सिहतमंद ऐं वालदेन में ख़ुशीअ जी लहर छाइजी वई। ठारू शाह नौशरफ रोड लिंक रोड ते वाक़े अलशफ़ा मेडिकल सेंटर में डॉक्टर नसीम शाह वटि भंगू भेण वासी औरत सनम लाल दिलदार खंड टिन पुटनि खे जनम ॾिनो। जिन पुटनि जी पैदाइश ते वालदेन में ख़ुशीअ जी लहर छाइजी वई। उन मौक़े ते डॉक्टर नसीम शाह मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त माउ ऐं ॿार बिल्कुलु सिहतमंद आहिनि। जॾहिं त अहिड़ी ख़बर पवण ते सवेरु शहरी मेडिकल सेंटर ते पहुची विया। लाड़काणू भरिसां बकापुर थाणे जे हद ॻोठ वॾा महर रोड ते चिंकीअ ते हथियारबंदनि फायरिंग करे टिन ॼणनि उस्ता मोहम्मद वासण औरत ज़ाहिदा जमाली मठार जमाली ऐं क़ुर्बान जमाली खे ज़ख़्मी करे छॾियो। इतलाह ते पुलिस वाक़िए वारे हंधि पहुची तफ़सील वठी ज़ख़्मियुनि खे खणाए इलाज जे लाइ लाड़काणू ट्रामा सेंटर मुंतक़िल करे छॾियो, जिथे ज़ख़्मी औरत ज़ाहिदा जमाली दम ॾेई छॾियो। जॾहिं त ज़ख़्मियुनि खे तिबी इमदाद ॾिनी वई। उन मौक़े ते मक़तूला औरत जे वारिस रुखसाना जमालीअ ॿुधायो त ॻोठ गाज़ी ख़ान जतोईअ में तरसियल ज़ाहिदा जमालीअ जे पीउ ग़ुलाम अब्बास जानब जमाली मुर्ता जमाली समेत ॿियनि हथियार बंदनि चिंचे ते फायरिंग करे ज़ाहिदा खे क़तलु करे मंठार ऐं क़ुर्बान जमाली खे ज़ख़्मी करण बाद फरार थी विया आहिनि। हुन लाड़काणे जे DIG ऐं SSP खे अपील कई आहे त वाक़े जो नोटिस वठी मुलविस हथियार बंदनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। हुन हवाले सां जवाबदार ऐं मक़तूला औरत जे विच में घरू मामिलो हलंदड़ आहे, जंहिं मामले तां अहिड़ो वाक़ियो पेश आयो आहे। ॿिए पासे पोस्टमार्टम बाद मक़तूला जे लाश वारसनि हवाले कयो वियो, जिथे लाश घर पहुचण ते घर में कोहराम अची वियो। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। इंसानी समाज जे तारीख़ खे जेकॾहिं गौर सां ॾिसजे त उहा रुगो बादशाहनि हुकुमराननि ऐं जंगनि जी तारीख़ न आहे, पर उहा महिनत वसीलनि दौलत ऐं इक़्तदार जे विर्छ जी तारीख़ पिणु आहे। क़दीम दौर जी गॾियल मिल्कत वारे समाज खे ग़ुलामदारी जागीरदारी ऐं पोइ सरमाएदारी निज़ाम ताईं समाज मुसलसल तब्दील थींदो रहियो आहे। पर हिकु सवाल हर दौर में ई मौजूदु रहियो आहे, जेको माण्हू दौलत ऐं पैदावार पैदा कनि था, उन्हनि खे उन दौलत ऐं फ़ैसिलनि में केतिरो हिसो हासिलु आहे। अॼु दुनिया जूं बुलंद इमारतूं, कारखाना, रोड, बंदरगाहूं, फ़सुल, सनतूं, टेक्नोलॉजी ऐं रोज़मरह जी ज़िंदगी जूं बेशुमार सहूलियतूं लखें किरोड़े पुरियतनि जी महिनत जो नतीजो आहिनि। मज़दूर पंहिंजे जिस्म, ज़हन ऐं वक़्त सां समाज खे अॻिते वधाइनि था, पर केतिरनि ई हालतुनि में पैदावार कंदड़ ऐं पैदावार मां फ़ाइदो हासिलु कंदड़ विच में वॾो फ़र्क़ु मौजूदु आहे। हिकु किलो मज़दूर शायदि महदूद ताक़त रखे, पर जॾहिं हज़ारे मज़दूर मुनज़्ज़म थियनि था त उन्हनि जी इजतमाही ताक़त हिकु वॾी मुआशी ऐं समाजी क़ुवत बणिजी सघे थी। साॻी तरह हिकु अकेलो हारी पंहिंजे मसइले सां विढ़ी सघे थो, पर मुनज़्ज़म हारी तहरीक ज़मीन, पाणी, उजरत ऐं ज़रई पॉलिसियुनि बाबति आवाज़ बुलंद करे सघे थो। उन ई करे तारीख़ में पोरियतनि खे विरिहाइण बि हिकु अहम हिकमत अमली रही आहे। कॾहिं ज़ात, कॾहिं बिरादरी, कॾहिं ॿोली, नसल, इलाइक़ो या सियासी नफ़रतुनि खे बुनियादु बणाए मिनत कंदड़ माण्हुनि खे हिक ॿिए खां परे कयो वञे थो। नतीजे में ग़रीब जो दुश्मन बणिजी वञे थो, जॾहिं त असल मुआशी ऐं समाजी ढांचे ते सवाल पोइ ते रहिजी वञे थो। सिंध जे हवाले सां पुरियतुनि जो सवाल अञा ताईं वधीक वसीउ आहे त हिते मज़दूर ऐं हारीअ जो मसइलो रुगो उजरत जो मसइलो न आहे,
पर ज़मीन पानी कुदरती वसीलन रोज़गार तालीम सेहत सकाफती सुजाणप सियासी अख्तियार से भी गुंजल है। सिंध की तारीख में हारिन मजदूर माहिगिर बन मेहनत कद तबक की जदोजहद उन गाल जो सबूत आन ही तो रुगो हुकुमरान की तारीख ना है पर अवाम पुरियतन की जदोजहद की भी तारीख पिण है। आलमी सतह से भी सनती इनकलाब का मजदूर तहरीक उन अठ कलाक कम मुनासिब उजरत यूनियन ठाण महफूज कम करण वो माहौल बन बुनियादी हकन के लिए डिघी जदोजहद कई पर अज के दौर अग का मुख्तलिफ़ है। टेक्नोलॉजी डिजिटल मईशियत मसनू जहानत पैदावार जहाँ नवा दरवाजा खुलिया सागे वक्त रोजगार की गैर यकीनी ठेकेदारी निज़ाम घट उजरत महंगाई दौलत के वधंदड़ गैर बराबरी जड़ा मसला पिण मौजूद हैं। अज पोरियत जो मतलब सिर्फ कारखाने में कम कद मजदूर ना है एप से कम कद ड्राइवर डिलीवरी राइडर ऑफिस जो मुलाजिम सहाफ़ी उस्ताद फ्रीलांसर नंढो हारी माहिगीर पांजे मिनत सा गद सफर कंदड़ हर मानू जदीद पोरियत समाज जो हिस्सो है। उन्हें करे अज की जरूरत एक अड़े नए इतमाई सोच की है जेका नफरत तशद बदरा बराबरी जमहूरियत समाजी इंसाफ मुआशी हकन से कायम होजे।

0: हिन वक्त जो सिंध राउंडअप बे आचर जे सिंध राउंडअप तई गुलाब खान भेण के दींदा इजाजत अलह निगहबान।
1: जो शहर पहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
4: GFM 88
3: नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: सुबुह की चाय या ट्रैफिक का जाम,

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो जी FM 90.8।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे मां गुलाब खान बेण।

सिंध राउंड अप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। हैदराबाद में हज़ारे माण्हुनि जो वहद ते सिंध मार्च, धरतीअ जे इंच इंच जी हिफ़ाज़त कबी, अॻवाणनि जो ख़िताब। सिंध जा 6,220 स्कूल ज़बून करार, पढ़ाई बंदि, शागिर्द मुतबादिल स्कूलनि ॾांहुं मोकिलण जो हुकुम। दादूअ में 3 महीननि जो ॿार 1.5 लख में मुबैना विकिरो, पीउ ते इल्ज़ाम, अमर जूं मीडिया आरोदाहूं। मीरपुर ख़ासि में 46 सेकेंडरी स्कूल टीचर भर्ती, आईडीज़ बि अलाट थी वियूं। हैदराबाद सखर मोटरवे खां अॻु पंजाब में नओं मनसूबो, सिंध वफ़ाक जे ॿिटे मयार ते एतिराज़ वारे छॾियो। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा, पोरियतनि जी महिनत, तबकाती फ़र्क़ ऐं समाजी तब्दीलीअ जी जिदोजहद। सिंध एक्शन कमेटी पारां सिंध जे विरागे ऐं वसीलनि ते वधीक वालार वारनि साज़िशुनि ख़िलाफ़ काल्ह हैदराबाद में कासमाबाद पूनम चौक खां वहदत सिंध मार्च कयो वियो। मार्च वाधूवा रोड नसीब नगर चौक खां थींदो, वाधूवा गेट ते पहुची जलसे जी सूरत इख़्तियार करे वियो। मार्च में सिंध एक्शन कमेटी में शामिल जमातुनि समेत सियासी, कौमपरस्त ऐं तरक्की पसंद पार्टियुनि जे हज़ारे कारकुननि शिरकत करे सिंध जो विरागो नामंज़ूर, सिंध जे वसीलनि ते वालार नामंज़ूर जा ज़ोरदार नारा हया। अॻवाणनि ख़िताब कंदे चयो त सिंध जी तारीख़ ऐं जाग्राफ़ी हैसियत बचाइण जे लाइ तहरीक जो ही पहिरीं शुरूआति जो मरहलो आहे। सिंध जा किरोड़े माण्हू रोडनि ते निकिरी ईंदा ऐं पंहिंजे वतन जी हिफ़ाज़त करे ॾेखारींदा। हुननि चयो त सिंध धरतीअ जा वारिस ऐं नौजवान न रुगो सिंध पर धरतीअ जा वसीला बि बचाईंदा। ही हुकमराननि सिंध जो विरागो करण जा ख़्वाब ॾिसण छॾे ॾियनि। हिननि वधीक चयो त वहदत सिंध तारीख़ी मार्च पंहिंजे वतन ऐं धरतीअ सां अहद वफ़ा जो ॾींहुं मल्हाए सिंध दुश्मन हुकमराननि खे पैगाम ॾेई छॾियो आहे त सिंध जा गैरतमंद माण्हू सिंध जी विरासत कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदा। तालीम खाते पारां सिंध जे 6,220 स्कूलनि खे ज़बून करार ॾेई पढ़ाई बंदि करण जो हुकुम जारी करे छॾियो आहे। अख़्तियारनि मूजिबि मॉनसून जे मौसम दौरान ज़बून हाल इमारतुनि जे शागिर्दनि खे वेझनि स्कूलनि में मुंतकिल करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। उन ॾस में तालीम खाते डिप्टी कमिश्नरनि खे चयो आहे त उहे ज़बून हाल इमारतुनि वारनि स्कूलनि जे वेझो मुतबादिल स्कूल ॻोल्हनि त जीअं शागिर्दनि खे उते मुंतकिल करे सघिजे। खाते पारां उहो बि ॿुधायो वियो आहे त ज़बून हाल स्कूलनि जी मरम्मत कॾहिं शुरू ऐं कॾहिं मुकमल थींदी, शागिर्दनि मुतबादिल स्कूलनि मां पंहिंजे स्कूलनि ॾांहुं कॾहिं वापसि ईंदा। ज़बून हाल इमारतुनि वारा उहे स्कूल सूबे जे 30 ज़िलनि में आहिनि। ज़बून हाल इमारतुनि जो सभ खां वधीक अंगु बदीन, मीरपुर ख़ासि ऐं थरपारकर ज़िलनि में आहे। दादू मिटुनि में हिन जे मासूम ॿार खे मुबैना तौरु 1.5 लख रुपियनि एवज़ विकिरो करण जो इल्ज़ाम साम्हूं अचण बाद ए सेक्शन पुलिस ॿार जे वालिद सुलेमान पवन खे हिरासत में वठी मामले जी जाच शुरू करे छॾी। मुतासिर औरत पंहिंजे भाउ राशिद अली ऐं मासूम नियाणियुनि ज़ाहिदा, निदा ऐं एमन सां गॾु एहतजाज कयो ऐं ॿार जी बाज़ियाबी जे लाइ अपील कई। मुतासिर औरत पंहिंजे मुड़ुसु सुलेमान पवन ते इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो त संदसि 3 महीननि जो मासूम पुटु महराज खे मुबैना तौरु हिकु निजी बैंक जे मुलाज़िम अक्सा जमाली खे 1.5 लख रुपियनि एवज़ कयो विकिरो कयो आहे। जंहिं वाकिए खे 1 हफ़्तो गुज़री चुको आहे पर संदसि ॿार वापसि नाहे थियो। औरत जो वधीक चवणु हो त खेसि मुबैना तौरु नशे आवर टिकियूं ॾिनियूं वयूं, जंहिं खां पोइ संदसि मासूम पुट खे संदसि मर्ज़ी ऐं ॼाण खां सवाइ मुबैना तौरु विकिरो कयो वियो। मुतासिर अमर जो चवणु हुयो त खेसि पंहिंजे ॿार जे विकिरे बाबति सख़्तु ख़दशा आहिनि ऐं हू गुज़िरियल 1 हफ़्ते खां मासूम पुट जी वापसीअ जे लाइ दरबदर थी रही आहे। हुन अख़्तरनि खां मुतालबो कयो त मामले जी जाच कराई वञे, ॿार खे फौरी तौरु बाज़ियाबु कराए खेसि जे हवाले कयो वञे। शिकायत मिलण बाद ए सेक्शन पुलिस मुतासिर औरत जे मुड़ुसु सुलेमान पवन खे हिरासत में वठी मामले जी जाच शुरू करे छॾी आहे। तालीम खाते में उस्तादनि जे जाली भर्तियुनि जो स्कैंडल ज़ाहिर, 6 ॼणनि खे ग्रेड 16 में सेकेंडरी स्कूल टीचर भर्ती करे खेनि जाली आईडीज़ बि अलाट कयूं वयूं। तालीम खाते अकाउंटेंट जनरल सिंध खे ख़तु लिखी मीरपुर ख़ासि में भर्ती थियल 6 जाली उस्तादनि जूं पघारूं बंदि करणु ऐं खयल पघारुनि वारी रक़म वापसि वठण जी हिदायत कई आहे। उन सिलसिले में मीरपुर ख़ासि ज़िले में ग्रेड 16 में 6 सेकेंडरी स्कूल टीचर फहद अली, अनिल कुमार, शाहरुख ख़ान, ज़ाहिद अली, अरशद अली ऐं आबदा परवीन भर्ती कया विया आहिनि। ज़रियनि मूजिबि स्कूल एजुकेशन खाते उन्हनि भर्तियुनि खे जालसाज़ी करार ॾिनो आहे। मज़े जी ॻाल्हि उहा आहे त जाली तौर ते भर्ती कयल उस्तादनि खे पर्सनल आईडी नंबर पिणु अलाट कया विया।
खाते जी आईटी सेक्शन जाली ऑर्डर ऑफर ते बारकोड प्रिंट लगायो। जाली बारकोड खां पोए आईटी सेक्शन पारां जाली आईडी अलॉट कई वही। उस्ताद जी भर्ती जाली साबित थियण खां पोए खाते अकाउंटेंट जनरल सिंध के खत लिखी जाली उस्तादन जो पघारूं रोकण ऐं वरतल पघारूं वापस वठण जूं हिदायतूं ॾिनियूं आहिनि। जाली उस्तादन जे पर्सनल आईडीज़ खे ब्लॉक कयो वियो आहे। स्कूल एजुकेशन खाते उस्तादन जे जाली भर्ती कंदड़ कामोरनि ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई नाहे कई। हैदराबाद सखर मोटरवे ते कम शुरू थियण खां अॻे ई पंजाब में नओं वॾो मनसूबो शुरू करण ते सिंध वफ़ाक़ी हुकूमत आॾो एतिराज़ उथारे छॾियो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी सदारत हेठि एकनिक इजलास में सिंध हुकूमत वफ़ाक़ जे मुबैना ॿिटे मयार ते ख़र्चनि जो इज़हार कयो। सिंध हुकूमत इजलास में मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो त वफ़ाक़ी हुकूमत वादे ख़िलाफ़ी करे रही आहे। सूबाई वज़ीर जाम ख़ान शोरो मुतालबो कयो त लाहौर सियालकोट 296 किलोमीटर मोटरवे खां अॻु हैदराबाद सखर मोटरवे ते कमु शुरू कयो वञे। ज़रियन मूजिबि जाम ख़ान शोरो चयो त हैदराबाद सखर मोटरवे पुराणो ऐं इंतिहाई अहम मनसूबो आहे। केतिराई साल गुज़रण बावजूदु ॿिनि वज़ीर आज़मनि जे वाइदनि ते अमल न थी रहियो आहे। जाम ख़ान शुरू वधीक चयो त हिकु भेरे सिंध हुकूमत ऐं सिंध जी आवाम सां कयल वाइदे जी भञकड़ी कई पई वञे। हुन एकनिक इजलास में सवाल उथारियो त वफ़ाक़ी हुकूमत हिन मामले ते संजीदगीअ जो मुज़ाहिरो छो न करे रही आहे। काल्ह ठारू शाह जे अलशिफ़ा मेडिकल सेंटर में औरत टिन ॿारनि खे जनम ॾिनो। ॿार सिहतमंद ऐं वालदेन में ख़ुशी जी लहर छाइजी वई। ठारू शाह नौशरफ रोड लिंक रोड ते वाक़े अलशिफ़ा मेडिकल सेंटर में डॉक्टर नसीम शाह वटि भंगू भेण वासी औरत सनम लाल दिलदार खंड टिन पुटनि खे जनम ॾिनो। जॾहिं पुटनि जी पैदाइश ते वालदेन में ख़ुशीअ जी लहर छाइजी वई। उन मौक़े ते डॉक्टर नसीम शाह मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त माउ ऐं ॿार बिल्कुलु सिहतमंद आहिनि। जॾहिं त अहिड़ी ख़बर पवण ते सवेरु शहरी मेडिकल सेंटर ते पहुची विया। लाड़काणो भरिसां बकापुर थाणे जे हद ॻोठु वॾा महर रोड ते चिंकीअ ते हथियारबंदनि फायरिंग करे टिनि ॼणनि उस्ताद मोहम्मद वासिण औरत ज़ाहिदा जमाली मंठार जमाली ऐं क़ुर्बान जमाली खे ज़ख़्मी करे छॾियो। इतलाह ते पुलिस वाक़िए वारे हंधि पहुची तफ़सील वठी ज़ख़्मियुनि खे खणाए इलाज जे लाइ लाड़काणो ट्रामा सेंटर मुंतक़िल करे छॾियो, जिथे ज़ख़्मी औरत ज़ाहिदा जमाली दम ॾेई छॾियो। जॾहिं ज़ख़्मियुनि खे तिबी इमदाद ॾिनी वई, उन मौक़े ते मक़तूला औरत जे वारिस रुखसाना जमालीअ ॿुधायो त ॻोठु गाज़ी ख़ान जतोईअ में तरसियल ज़ाहिदा जमालीअ जे पीउ ग़ुलाम अब्बास भाउ जानब जमाली मुर्ता जमाली समेत ॿियनि हथियारबंदनि चिंचीअ ते फायरिंग करे ज़ाहिदा खे क़तलु करे मंठार ऐं क़ुर्बान जमाली खे ज़ख़्मी करण बाद फरार थी विया आहिनि। हुन लाड़काणे जे DIG ऐं SSP खे अपील कई आहे त वाक़े जो नोटिस वठी मुलविस हथियारबंदनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। हुन हवाले सां जवाबदारनि ऐं मक़तूला औरत जे विच में घरू मामिलो हलंदड़ आहे, जंहिं मामले तां अहिड़ो वाक़ियो पेश आयो आहे। ॿिए पासे पोस्टमार्टम बाद मक़तूला जे लाश वारसनि हवाले कयो वियो, जिथे लाश घर पहुचण ते घर में कोराम अची वियो। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। इंसानी समाज जे तारीख़ खे जेकॾहिं गौर सां ॾिसजे त उहा रुगो बादशाहनि हुकुमराननि ऐं जंगनि जी तारीख़ न आहे, पर उहा महिनत वसीलनि दौलत ऐं इक़्तदार जे विर्छ जी तारीख़ पिणु आहे। क़दीम दौर जी गॾियल मिल्कत वारे समाज खे ग़ुलामदारी जागीरदारी ऐं पोइ सरमाएदारी निज़ाम ताईं समाज मुसलसल तब्दील थींदो रहियो आहे। पर हिकु सवाल हर दौर में मौजूदु रहियो आहे, जेको माण्हू दौलत ऐं पैदावार पैदा कनि था, उन्हनि खे उन दौलत ऐं फ़ैसिलनि में केतिरो हिसो हासिलु आहे। अॼु दुनिया जूं बुलंद इमारतूं, कारखाना, रोड, बंदरगाहूं, फ़सुल, सनतूं, टेक्नोलॉजी ऐं रोज़मरह जी ज़िंदगी जूं बेशुमार सहूलियतूं लखे किरोड़े पुरियतनि जी महिनत जो नतीजो आहिनि। मज़दूर पंहिंजे जिस्म, ज़हन ऐं वक़्त सां समाज खे अॻिते वधाइनि था, पर केतिरनि ई हालतुनि में पैदावार कंदड़ ऐं पैदावार मां फ़ाइदो हासिल कंदड़ विच में वॾो फ़र्क़ु मौजूदु आहे। हिकु अकेलो मज़दूर शायदि महदूद ताक़त रखे, पर जॾहिं हज़ारे मज़दूर मुनज़्ज़म थियनि था त उन्हनि जी इज्तिमाई ताक़त हिकु वॾी मुआशी ऐं समाजी क़ुवत बणिजी सघे थी। साॻी तरह हिकु अकेलो हारी पंहिंजे मसइले सां विढ़ी सघे थो, पर मुनज़्ज़म हारी तहरीक ज़मीन, पाणी, उजरत ऐं ज़रई पॉलिसियुनि बाबति आवाज़ बुलंद करे सघे थो। उन ई करे तारीख़ में पोरियतनि खे विरिहाइण बि हिकु अहम हिकमत अमली रही आहे। कॾहिं ज़ात, कॾहिं बिरादरी, कॾहिं ॿोली, नसल, इलाइक़ो या सियासी नफ़रतुनि खे बुनियादु बणाए मिनत कंदड़ माण्हुनि खे हिकु ॿिए खां परे कयो वञे थो। नतीजे में ग़रीब जो दुश्मन बणिजी वञे थो, जॾहिं त असल मुआशी ऐं समाजी ढांचे ते सवाल पोइते रहिजी वञे थो। सिंध जे हवाले सां पुरियतुनि जो सवाल अञा ताईं वधीक वसीउ आहे त हिते मज़दूर ऐं हारीअ जो मसइलो रुगो उजरत जो मसइलो न आहे,
पर ज़मीन पानी कुदरती वसीलन रोज़गार तालीम सेहत सकाफती सुजाणप सियासी अख्तियार सां भी गुंझल है। सिंध की तारीख़ में हारिन मजदूर माहिगिर बन मेहनत कदड़ तबकन की जिदोजहद उन गाल जो सबूत आन तो रुगो हुकुमरान की तारीख ना पर अवाम पुरियतन की जिदोजहद की भी तारीख पिण है। आलमी सतह से भी सनती इनकलाब का पोए मजदूर तहरीकुन 8 कलाक कम मुनासिब उजरत यूनियन ठाण महफूज कम करण माहौल बन बुनियादी हकन के लिए डिघी जिदोजहद कई। पर अज के दौर अग का मुख्तलिफ है। टेक्नोलॉजी डिजिटल मईशियत मसनू जहानत पैदावार जहा नवा दरवाजा खुलिया सागे वक्त रोजगार की गैर यकीनी ठेकेदारी निज़ाम घट उजरत महंगाई दौलत के वधंदड़ गैर बराबरी जड़ा मसला पिण मौजूद है। अज पोरियत जो मतलब सिर्फ कारखाने में कम कदड़ मजदूर ना ऐप से कम कद ड्राइवर डिलीवरी राइडर ऑफिस जो मुलाजिम सहाफी उस्ताद फ्रीलांसर नंढो हारी माहिगीर पांजे मिनट सा गद सफर कंदड़ हर मानू जदीद पोरियत समाज जो हिस्सो है। उन्हीं करे अज की जरूरत एक अड़े नए इतमाई सोच की है जेका नफरत तशद बदरा बराबरी जमहूरियत समाजी इंसाफ मुआशी हकन से कायम हो जे।

0: जो हिन वक्त जो सिंध राउंडअप बे आचर जे सिंध राउंडअप तई गुलाब खान भेण के दिंदा इजाजत अल्लाह निगहबान।
1: जो शहर पहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8।